तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे करे अपने।